Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

अबरङ थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथेट नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर से सेमनिबा काटे दमसुमुला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अङ्क 87 रङ्गी स्वागत मुला न वियोग तामाङ रङ्ब जोशी रङ्गदेन छुटकारला गेन गवाही जुमुला रङ्दा हरङ्ब नोङमुला तिगा रङ ठेनिगा देला लाग्री जेखेन उत्साहित मुसुला वा चुसे रङ्दा रङ्ग लाग्री एन उत्साहित सोमुला रङ्गी दाङ्गला प्रश्न मुला थेनन परमेश्वर जोशी ताम गदे ठेनिगा देला लाग्री लसुजी रो ठक्कन थेनन परमेश्वर मुसुला जोशी रङ्दा माया लसुमुला जति परमेश्वर चाहिँ थेनी गरी त माया लसुमुला थेन दे रोसे रङ्गला लाग्री एन ओत्ते नन लसुला जति परमेश्वर चाहिँ थेनी गरेर लाग्री लसुजी यसैया 54 अध्यायला 10 गाङ कदे योङ योङ ताजी थेन दे गाङ कदे हटप ताजी तासै एन एला लाग्री गाला अटुट माया हटप लसेला आरे नमी गाला शान्तिला करार भङ्गा ताला एदा कृपा लसुला परम प्रभु सुङला जब रङ्सी रङ्गला लुइरे रङ्सी आशा लामा परिणाम अमरङ मुस्युला चुला मतलब चु आइन भकि परमेश्वर से राङ्दा ठ्रास्यु मुबा वा परमेश्वर से राङ्दा मैस्युबा मुला वा रङ रोला लाग्री महत्वपूर्ण आरे मिसे सन्दो मिग देदा चुरङ्ग व्यवहार लजिबा हम्ला तसै परमेश्वर से राङ्ला जत्तुको गदेदा हाइमा चुरुङ्गा व्यवहार अलास्यो मुला यसैया 41 अध्यायला 10 चु कारण थक्लासुगो तिग्द विषम नएनन् मुला निरोसहित थलासुगो तिग्द विषम नएला परमेश्वर हिनमा नएदा बाङ बासोला नएदा सहायता लाला नला धार्मिक तर दाहिने यासे नएदा समाप लाला दत्ते परिस्थिति रङ्गला पछाडि अमरङबारी हम्ला रङ कठिन दुई ग्याम गुजब तबारी हम्ला रङ्गला परिस्थिति रङ्गमन तसै हाइमदमन कृतज्ञ तसुगो हाइमदमन स्वीकार लसुगु कि परमेश्वर से राङ्दा माया लसुमुला रो राङ्ला आभा मुसुला थेन्दे परमेश्वर से राङ्ला हेर्चा लाभ प्रतिज्ञा लसुमुला थेन्दे रङ्से बिताइदिव दिन गदे दानुन ताम आरे जुन रोसे राङ्ला लुइरी राङ्ला दुई तालिला अनुसार सम्बोधन लस्योसेला आरे थेन्दे समाधान लस्योसेला आरे फिलिपी 4 अध्यायला 11 इन्ज 13 नद खाच तसी बिसी पङ्बा आइन् तिग्द विषम जत्तोन दुरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ओछे खाच तगै अतगै खरङ लसी ब्रो ब्रतोला बिसी नद था मुला थेरङ लसिन चमेङ्गै अचमेङ्गै लान मुसै अमुसै जत्तोन दुरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ख्रिस्टे पिनबा शक्ति गर्दिनुहुन् नाइचु जम्मन ताम लाबरी खामला दत्ते परिस्थिति याङला पछरी मुवकी आरे परमेश्वर सिमुला कि याङ जबा क्याम्री मनोवृत्ति सोभरी कायम थाल्ला आज अब परिस्थिति ग्याम व्यवहार लामा सन्तुष्ट तसेला रहस्य विवाह यीशु ख्रिस्ट ग्याम छामला याङला एकता मोसेबा हिन्बा परमेश्वर ग्याम याङलेन याङसे सावना लजिबा जम्मन अवरोध गदे दा पार लबरी हाम्बा देन अधिकार निदोन मुला कलसी 3 अध्यायला 16 इन्जे 17 एनी गदेला सेम सदन ख्रिस्ला वचन से प्लिङसी गिक सेन गिग्दा रङ्गला जम्मन ज्ञान बुद्धि से लोगो ओचे परमेश्वरला आत्मासी पिन्बा वै सेमहेन से गोसी परमेश्वर दा धन्यवाद पिन्

0: एनी गरे से खजी भई के दिन ताम लसै प्रभु यशुला मिन ग्यामसेन लाउ ओछे प्रभु यशु ग्यामसेन परमेश्वर आवादा धन्यवाद पिनगो चुसे रंगला परमेश्वर रूबी शिवा लावन प्रत्येक दिन शोभा छनोट लस्युगो परमेश्वर दा रंगला ज्ञान निर्देशन लबरी पिन्छुगो थेन रे रंगला लुइरी रंगलन परिस्थिति करे हामायन कृतज्ञ सुसुगो थेन रे निश्चित रूबी रंगसे रंगला लुइरी उचित दुइरी परमेश्वरला गेन आशिष कते अनुभव लस्युला भजन संग्रह 136:26 पदरी एरङ्गी मुगा स्वर्गला परमेश्वर दा थुजे छे पिङ्गो तिक देविसम परमेश्वरला प्रेम अनन्त काल दोना चलतामुला आमेन परमेश्वर से रङले जीवन रे प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-85-53-339 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार
1: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज
2: रेडियो कार्यक्रम जीवनको वचन हो।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN.
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
2: CIN को साझा खबर अब नेपाली पात्रोमा पनि
3: स्थानीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नेपाली FM तथा अनलाइन रेडियोहरू एकै ठाउँमा सुन्न तिथि मिति तथा पञ्चाङ्ग सम्बन्धी सबै जानकारी लिन
2: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको नेपाली विनिमय दर सुन चाँदीको दर भाव मौसम सम्बन्धी सूचना र सार्वजनिक विधा बारेको जानकारी लिन पनि
3: नेपाली पात्रो अब तपाईँको मोबाइलमा